ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासे देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजते दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत

तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरों तुर आद जुगाद अना

चित ना चले मन पयो भंग। संतां दे कोलों स्वामी रामानंद दी उपमा शोभा सुनी स्वामी जी कोल जाण दी।

कि हुण पीपा राजा नहीं रहा, वो एक गरीब है, एक फकीर है, वो दर्शन करने चाहता है। सेवादार ने स्वामी रामानंद नूं बेनती कीती है, स्वामी जी राजे पीपे ने सब कुछ दान कर दिता है, फकीरां वाले कपड़े पा ले ने, सोना चांदी सब कुछ गरीबां विच वंड दिता है। वो कहिंदा मैं हुण गरीब हां, मैनू दर्शन चाहिए ने। पर स्वामी रामानंद हाली होर प्रीख्या लैनी चाहते सन। कहन लगे अच्छा राजे नूं कहो

के पहला कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका नगरी चलिया जावे ते भगत पीपा जिड़ा हुण राजा नहीं रहा ओ द्वारका नगरी नूं तुर पिया। ओ भगत पीपा जी सानू उपदेश करदे ने भाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई मैं तुहानू राम की दुहाई देना ओदा नाम जपो क्यों भटकदे हो ना माया ने नाल जाना ना तुहाडे शरीर ने तुहाडी नाल जाना एक राम दा नाम है जिन्हें तुहाडी सहायता करनी है भाई मैं तुहानू वार वार दुहाई देना राम।

द्वारका नगरी जा पहुंची, पर पता नहीं कि मैं द्वारका नगरी विच ही बैठा हूं। यह हुई कृष्ण भगवान की नगरी, एक तलाशी एक ब्राह्मण नु पुछिया द्वारका नगरी किथे, जिथे कृष्ण भगवान रहिंदे ने। ओ कहन लगा अजीब आदमी द्वारका नगरी विच बैठा है ते पुछदा है द्वारका नगरी किथे। ओ खिज के कहंदा है ए पानी दे विच द्वारका नगरी है ते इत्थे ही भगवान रहिंदे। भगत बीबे ने सुनदे सार पानी विच छाल मार दित्ती, पिछे पिछे राणी ने छाल मार दित्ती, पर भगवान

इंसान परमेश्वर की बंदगी करते हैं, वो हमेशा वास्ते अमर हो जाता है। जिस तरह भगत पीपा जी होए ते गुरु अर्जन साहब ने भगत पीपा जी का यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया। जिथे असी गुरुआ नू मथा टेकने आ, भगत पीपे नू भी।

कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिए लाए त्याना परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु नानक देव जी तो लेके 19वीं सदी तक गुरुवाणी का कीर्तन तंती साज जिवें के रबाब सरंदा ताउस सरंगी आदि राही हुंदा सी। 20वीं सदी के आरंभ होने ते गुरुवाणी का कीर्तन पच्छम दे साज हारमोनियम ते होना शुरू हो गया, जिस करके तंती साज अलोप हो गई। तंती साजा राही गुरुवाणी दे कीर्तन दी जो इलाही धुन निकलदी है ओ हारमोनियम ते नहीं निकल सकदी, जिस करके सिख जगत ने अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दे बच्चियां नूं कहा कि तुसी कीर्तन विच मुड़ सत्कार योग पुरातन तंती साज सुरजीत करो। साध संगत जी, संत अतर सिंह जी महाराज मस्तु आने वाले दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब दे बच्चियां लई अरदास करो कि आप दे ए निमाणे बच्चे गुरु साहिब दे बख्शिश कीते पुरातन तंती साज रबाब सरंदा ताउस सरंगी ते कीर्तन करके गुरु साहिब दी बख्शिश लैन। हुण जिस शब्द दा गायन असी करन जा रहे हां ए पावन शब्द तन गुरु नानक देव जी महाराज दा राग बसंत हिंडोल विच उच्चारण कीता है। बसंत हिंडोल महला पहला। राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पड़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रहाओ पितर अगन वनस्पत मौली सागर पंडे पाया चंद सूरज दोए घर ही पितर ऐसा ज्ञान ना पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रह कहे आ सुनहे ना खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा।

वो परमात्मा अकाल पुरख निमाणिया नु मान दिंदा है। धन गुरु नानक पातशाह तो लैके दसां पातशाह की प्रतख जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब तक ऐ तुसीं वेखो निमाणियां नूं माण है। अरमता साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने कीती, पाइसा भाई मरदाने जै नूं जो एक पिछड़ी जाति विचों सी, ओनू अपने गल नाल ला के इतना वड्डा मान दिता। कहन लगे भाई अड तो तू मेरा भाई है। अपना भरा बना लिया, अपना भरा बना के इतना मान दे दिता कि भाई साहब की बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद है। जिथे आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करने आ उथे भाई साहब भाई मरदाना जी नूं भी नमस्कार हुंदी है। प्रोफेसर प्यारा सिंह जी पदम ऐसा जिक्र करते हैं। सो मैं जिक्र कर रहा निमाणिया दा माण। फिर धन गुरु नानक पातशाह ने पाइसा भाई लालो जी दा कुंडा आप खटखटाया। लालो सत करतार, भाई लालो तन रंकार। कहिंदे ने आवाज आई बाबा भंडारा अगे है, ये तो एक गरीब का घर है। सतगुरु कहन लगे ना भाई मैं भंडारा खान नहीं आया, मैं ते तेरे कोल आया। बुआ खोलो, जो तो बुआ खोलिया तो वेखदा है धन गुरु नानक पातशाह सामने खड़े ने। जी आया आख्या, प्यार नाल अंदर बिठाया। धन गुरु नानक पातशाह ने इस निमाणे नूं भी मान बख्शे, क्योंकि वो है ही निमाणिया का माण है। संपूर्णता धन गुरु अर्जन साहब दे रहे ने। ध्यान देना, भाई मरदाना ते भाई लालो जै नूं गल नाल ला के गुरु साहब ने निमाणिया नूं माण दिता। धन गुरु अर्जन साहब हुण की कर रहे ने उन्हां पिछड़ियां जातियां नूं जिन्हां नूं समाज ने दुरकारिया होया सी, साध संगत उन्हां नूं गल नाल ला लिया। अपनी गल नाल ला के इतना सन्मान दे दिता, अपने नाल बिठा के अपने वर्गा दर्जा दे दिता। अज तुहाडे समक्ष दास केवल इतनी ही बात रखेंगे कि तुसी वेखो निमाणिया नूं मान किवें मिलदा है। जिहड़ा इस दर ते निमाणा बन के आउंदा है उहनूं गुरु घर वल्लों मान किवें मिलदा है, इज्जत रिस्पैक्ट किवें मिलदी है। हुण सतगुरु जी बाणी विच कहिंदे ने

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

परमात्मा की ड्यूटी निभाइए वह मालक भी साड़िया ड्यूटियां देगा। बिल्कुल ऐसा हुंदा है। कहिंदे ने अज इस गल नू वेख के हैरान होया, दूरो राणे सदके गलो को आए खोल पहनाई, बस कीता हो तुद अद बोले राधा सुने लुकाई, प्रगट पई भगत वड़ी है। ये वड़ियाई भगत नू मिली है। साध संगत सतगुरु जी ने बाणी विच उपदेश दिता है, सहन नाई बुतकारिया ओए कर कर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। अंत भी सतगुरु जी कहिंदे ने ए

जो भीख मंगावै तक्या कट जाय। तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण, बहर न होए तेरा आवन जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी अंदर समुची मनुखता दी जीवन कल्याण दी गल कीती गई है। गुरमत इस ख्याल नाल सहमत नहीं कि संसार विच दो चार बंदे जड़े ने वो उच्चे सुचे पवित्र जीवन वाले हो जान, ते बाकी दी दुनिया उसे तरह कीड़िया मकौड़िया वांग जमदी मरदी रहे। गुरमत इस आशे नूं प्रगट करदी है कि सारा संसार जड़ा है इस दे उधार दा बंदोबस्त वाहिगुरु अकाल पुरख ने कीता होया है। इसे आशे दी व्याख्या बाणी विच कीती गई है। बड़े चिर तों मनुख दे सामने यह समस्या है कि यह जिहड़ी दुनिया की दौलत है, संसार की माया है, इहदे नाल मैं किवें वरतना। ते धर्म दे धर्मी तो लोग आम तौर ते गल कहिंदे ने कि जिन्ना चिर इहनूं छड्डोगे नहीं उन्ना चिर रब दे नाल ते जुड़ ही नहीं सकदे। जदों गुरमत नूं चंगी तरह समझने आ तां इह गल साडे पल्ले पैंदी है कि गुरू साहिब ने इस माया नूं त्यागण दा कोई उपदेश नहीं दिता। गरीबी है या अमीरी, थोड़ी माया या बहुती, इस गल दा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि माया दे हुंदिया होया उस वाहिगुरू अकाल पुरख नाल अपने चित नूं जोड़ना। भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी। आंदे ने गुरसिख योगी हन, ऐसे योगी के माया विच रहिंदे होए भी वो चितन ने जागदे होए ने समझदे ने भी इस माया ने साडे नाल नहीं जाना। वो कहिंदे ने भी ये माया परमात्मा ने बनाई है, माया तो उसने संसार बनाया है। इसलिए किते भी मनुख चला जाए मनुख दा शरीर मनुख दी अपनी होंद भी माया नाल है, माया दा पिछा नहीं छड़दी। माया तो बिना यह संसार हो नहीं सकदा। इस करके गुरु साहिब ने कहा इहनूं नफरत करन दा कोई मतलब नहीं, यह परमात्मा ने बनाई है। गुरु अमरदास पातशाह ने श्री राग विच एक बचन कीता है, सतगुरु कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। बाणी नूं जदों ध्यान नाल पढ़ीए साडियां कई समस्या हल हो जांदियां, पर असीं बाणी वल ध्यान नहीं दिंदे, बंदियां वल ध्यान दिंदे। मुश्किल साडी आ है, कहिंदे फलाणा बाबा कह गया, बस स्यापा पै जांदा सानूं। ते गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तुहाडे कोल मौजूद है, उस नाल गल करके पुछ के वेखो कि गुरु साहिब की कहिंदे आ। बंदा गलत हो सकदा है, पर असीं बंदे दे मगर लगण वास्ते तैयार हो जांदे आ। साहिब कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। मनमुख कर्म करें नहीं बूझें बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मन आए। गुरबाणी की रोशनी नाल यह गल साडी समझ विच आ जाएगी, पता लग जाएगा कि असां संसार दे अंदर इस माया विच रहिंदे आं, किस तरह उस मालक नाल अपनी सांझ पाउणी है। इसे करके भगत जी का वचन जो कीर्तन द्वारा सरवण कीता है, कहिंदे ने तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहर ना होए तेरा आवण जान। कहिंदे ने हे मेरे मना तू उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं चेते कर जो आप निर्वाण पद का मालक है, ते तेनू उस अवस्था विच लै जाएगा।
तेरा जमन मरण कटिया जाएगा। यह केंद्रीय ख्याल है शब्द का। तो कहते ने किसी कीमत उत्ते भी तू परमात्मा नू नहीं छड़ना। जिस वेले त्रिलोचन ने नामदेव ने कहा मैं सुनिया तू भगत है, कादा भगत है, तू तो हर वेले कपड़िया च लगा रहना है, कदी धोना है, कदे छापदा है, कदे कुछ करदा है। वो कहन लगा ठीक है मैं काम करदा हां, लेकिन भाई काम करदया होया मैं उस मालक नू चेते करदा रहना, भुलदा नहीं, मैं उन्हू याद करदा रहना वा। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। मैं चंगे तो चंगा कपड़ा भी हाथ विच लैके कदे ए नहीं सोचदा कि कपड़ा ही सब कुछ है। मैं उस वाहिगुरु अकाल पुरख तो सदके जाना भी जिसने ए सुंदर कपड़ा बनाउण दी विध बनाई है। मैं सुंदरता देख के भी उन्हू याद कर लैना, मैं मुसीबता देख के भी उन्हू याद कर लैना। हर हालत विच उन्हू याद करन दी गल मैनू विसरदी नहीं। इसे करके कहिंदे ने जो राज देहे तां कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तां क्या घट जाई। कहिंदे ने भिख्या मंगाएगा तां भी तैनू चेते करदा रहना है, ते ये याद राज दे देगा मैं तां भी तैनू चेते करदा रहना है। यह नहीं कि मैं राज दी वडियाई विच पै जाणा ते समझना भी सब कुछ राज ही है, ते भिख्या मंगावे ते मैं तैनू गालां कढ़न लग पावां भी तूं कहदा रब मैनू दित्ता कख नहीं। वो कहिंदे नहीं, किसे हालत विच भी मैनू रखे, मैं मेरा कम है तेनू चेते रखना, तेनू याद करना। इतिहास की एक वार्ता है सतगुरु गुरु हर राय साहब दे इतिहास की। उन्होंने एक सिख होया, बड़ा गरीब जिहा सिख सी, किरती किसान, भाई पूंगर करके इतिहास ने उहदा नां दिता है। खेती करदा मिहनत, पर गुरु साहब के दसे उपदेश के मुताबिक अमृत वेले उठदा, नाम जपदा, बाणी पढ़दा, फिर अपनी किरत विच लग जांदा। कोई अतिथि आवे, आया गया लोड़वंद, कोई जग्यासू आवे, वह सेवा करदा। ते एक चलदा फिरदा साधु भी आ गया, बड़ी सेवा कीती उसने, बड़ा प्यार कीता। ते उस साधु दे मन विच ख्याल आया कि इस बंदे कोल दौलत नहीं है, पर प्यार, सेवा, हमदर्दी, मनुखता दा सब तो उच्चा गुण जो किसी दौलत नाल प्राप्त नहीं हुंदा, इस मनुख दे कोल है। ते मेरे कोल पारस है जो सोना बना सकदा धात नूं, ते इस नूं पारस दे देवां, इहदे कोल अमीरी दौलत आ जाएगी, ते होर भी वध सेवा कर सकेगा, इहदी गुरबत दूर हो जाएगी। खबरे इसे वास्ते ही सेवा करदा होएगा कि कितों कुछ लभ जाए। उसने पेशकश कीती उस सिख नूं, कहा भी ये पारस तू लै लै। कहण लगा मेरे किसे काम नहीं, मैनू वाहिगुरु अकाल पुरख ने बहुत कुछ दिता है, गुरु दे उपदेश दे मुताबिक जिंदगी सबर सिदक नाल गुजर रही है, सेवा विच नाम जपण विच कोई ढिल नहीं है, दसा नवां दी किरत करदा हां। वो कहण लगा नहीं, तेरा गुजारा तंग है, मुश्किल नाल रोटी चलती है। कहण लगा चंगा फिर, जे तुसी महापुरुष हो, इसी गल ते आए हो, उन्हें कई मारी धरती ते, ते तोआ कढ दिता छोटा जिहा, आखण लगा इत्थे रख दिओ, ते मिट्टी पाती। समा बीत गया, साल दो साल लंघ गए, ते साधु दे मन विच ख्याल आया कि चल के देखा ते सही कि उस बंदे नूं पारस दिता सी, ते उत्थे तां महल खड़े होए होणगे, नौकर चाकर होणगे सेवा करन लई। जिस वेले आया ते उन्हें वेख्या भी उह ते उसे तरह चल रहा कम, उन्हें पुछया आण के, आखण लगा मेरा पारस। सिख कहण लगा मैनू तो याद भी नहीं, वह तो जिथे दबिया हो दबिया सी उथे ही होएगा, तू वरत्या नहीं। कहण लगा महापुरशो मैं तुहानू पहलो भी कहा सी कि मैनू इस वस्तु की जरूरत कोई नहीं, मेरी जिंदगी गुरु पातशाह की सिख्या के मुताबिक बहुत वधिया गुजर रही है, ते मैं किसे लालसा नू लैके कोई सेवा धर्म कर्म नहीं करदा। बड़ा हैरान होया, आखण लगा मैनू अपने सतगुरु दे कोल लैके चलो। गुरु हर राय साहब दी चरण शरण विच उस सिख ने लियांदा, ते गुरदेव ने समझाया, आखण लगे देखो तुसी बंदगी दा रस्ता अख्तियार करके भी, साधु बन के भी, अजे भी इस ख्याल विच उलझे हुए हो कि कोई पारस हाथ लग जाए, किसे नू अमीर कर दईए,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਾ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਕਰ ਪਕਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ ਤਬ ਉਹ ਚਰਣੀ ਆਏ ਪਈ, ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤਨਾ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

काले खरना कबीरा तुरत केल के पुड़िया बांदी दे दिल से चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए

चलने चलना हार विचार ले मनो गंडेंदिया छे मार तोड़ेंदिया सिखिनो जिमें

छिन छिन और देहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आऊं लागा, सो दिन आऊं लागा।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछ न सूझे कैद कबीर सुमरे प्राणी कैद कबीर सुमरे प्राणी।

मंगनी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिदी, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हैं, तालाब हैं, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे, आखिर की होया।

तू उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनू जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

पंचम पातशाह अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं। ओ मनुख भागा वाला है जिससे मन विच तेरा प्यार जाग पिया, जिससे मन विच तेरे दर्शना दी तांग पैदा हो गई, जेड़ा विराग विच तेरे दीदार करना चाहता है, जिसके मन विच विराग है उसनु ही प्रभु मिल पैंदा है। ओ प्रभु दे दीदार कर सकता है जिसके मन विच विराग है। रायपुर दे रहन वाले सोना अते मोहन जिन्हां नु भक्ति दा रंग चढ़िया है, दिन रात ठाकरां दी पूजा करदे हन, निता पर ठाकरां नु इशनान करवा के धूप बत्ती करके कीर्तन विच जुड़ जांदे हन, मगन हो जांदे। एक दिन ठाकरां नु इशनान करवाउण वास्ते जल लिया रहे हन, तां रस्ते विच एक गुरु दा प्यारा गुरसिख जो जख्मी हालत विच पिया है ते मुखों उचार रहा है कि कोई एक घुट पानी दा पिला जा, ता इन्हां ने सुनिया अते रुक गए। ता फिर की आख्या, असी ता ए पानी ठाकरां दे इशनान वास्ते ले जा रहे हां, ए पानी जूठा हो जावेगा ता फिर तुर पे। फिर गुरसिख ने आवाज दिती, भाई एक घुट पानी दा पिला जाओ। फिर दोनों जने रुके, वापस मुड़े कि इस नु घुट पानी दा पिला दे। फिर आखदे हन कि जे इस नु घुट पानी दा पिला दिता ए पानी जूठा हो जावेगा, इस जल दे नाल असी ठाकरां नु इशनान कराउणा। फिर तुर पे ता गुरसिख ने आख्या, तुसी एक घुट पानी दा नहीं पिलाया, अच्छा जिस ठाकर वास्ते तुसी जल ले जा रहे हो ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। आज गुरसिख दे मुंह चो ए आवाज निकली, ए आवाज सोना ते मोहना दे कन्ना विच पई, ता ए आवाज गूंज उठी, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। घर आए, ठाकर नु इशनान कराया, कीर्तन करन लगे, पर आज मन नहीं जुड़ रहे है। कन्ना विच ओ आवाज आ रही है, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त मन ना जुड़िया, सोचिया कि उस गुरसिख नु घुट पानी पिला आई, हो सकता है साडा मन जुड़ जावे। ता उथे पहुंचे की तकिया, जो गुरसिख पानी मंग रहा सी अज शरीर छड़ गए, श्वास निकल गए हैं, मन बहुत उचाट होए कि असी इस नु एक घुट पानी दा नहीं पिला सके, सचमुच एक बड़ा वड्डा पाप कर बैठे। ता पुछिया कि ए गुरसिख कौन है, पता लगा कि ए कलगीधर पातशाह दा अनन सिख है, प्यार वाला सिख है, जो संगत शहर कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन जा रही सी, डाकुओं ने संगत ते हमला कर दिता, ता इस गुरसिख ने डाकुओं नाल मुकाबला कीता, ता डाकुओं ने इस नु जख्मी कर दिता, जो कि पानी मंगदा मंगदा शरीर छड़ गए। ता इन्हां दोहां दे नेत्रां विचों अथरू वग तुरे कि असी इतने निभागे, इतने निकरमे कि असी इस नु एक घुट पानी दा भी नहीं पिला सके। अज मन विराग विच आ गए, मन भर गए कि किसे तरीके सहज कलगीधर पातशाह दे दीदार करिए ते अपनी भुल बख्शाई। ता अज दोनों दे मन भर गए, दर्शना दी तांग पैदा हो गई, उस सज्जन नु लभण तुर पे हन। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंती।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगता ने दर्शन कीते बख्शा हासिल कीतियां ता इना दोना नु पता लगा सोना ते मोना के साहिब कलगीधर पातशाह इथे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असी भी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त सह वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतों दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने। ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

गोविंद सिंह सच्चे पातशाह भी उस्तत कर दे हुए आप कहते हैं धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तू शहनशाह का शहनशाह है तेरे समान संसार विच होर कोई शहनशाह नहीं है आ दुनिया दे सारे

गुंडन वाला है, सात सकत बोलो श्री हक हक आ कहा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नु जानिया है, इस वास्ते संसार विच तू महाराजिया का महाराज है, तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं, इस वास्ते मैं सारे संसार नु छड़ के तेरे चरणों विच आया हां,

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जाऊंगी, वो सदा तेरे दरबार तो चोलियां भरती जाऊंदा। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

बेगरह पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल राह गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है क्यों।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा रहा गुरु गोबिंद सिंह, साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालिक है,